तो खिया उतरे मन की भुख गुर गुर बन तिन हरिया कीतिया नानक किया मनुख पौड़ी सोए सादा तार मनहुना विसरै कड़ी न मोहत चसा तिस बिन ना सरे बा अंतर बाहर संग क्या को लोक करे जिस पात रखे आप सो भव जल तरे भक्त ज्ञानी तपा जिस कृपा करे सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरे जिसे जराए आप सोई अजर जरे तिस ही मिलिया सच मंत्र गुर मन तरे श्लोक महला पांजवा तन सो राग सुरंगड़े आलापत तिस सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिनी इक मन एक राध्या तिस सद बल तिन सद बल हारे जा।

संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस चिन पाया थिरता का सुहाग जेह मुख बेद गायत्री निकसे सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जाके पाए जगत सब लागे स्यों को पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पाडे दोजक परह रहाओ आपन ऊंचा नीच कर पोजन हठे कर्म कर उदर परे चौदह चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीप कूप लै कूप परे तू ब्राह्मण मैं कासीक जुलहा मोहे तुहे बराबरी कैसे के बन है हमरे राम नाम कहे उबरे बेद परोसे पांडे डूब मरहे तरवर एक अनंत डार साखा पहप पतर रस परिया एह अमृत की बाड़ी है रे तिनहार पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाओ पावर एक पहपरस बीदा बारह ले और तारिया सो रह मदे पवन चकोरिया आकाशे फर फरिया सहज सोनक बिरवा उपजया धरती जल हर सोखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन एह बिरवा देखिया मुंदरा मौन दया कर चोली पत्र का करो विचार रे खिंता एह तन सियो अपना नाम करो आधार रे ऐसा जोग कमावो जोगी जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ बुद्ध पिपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई पंच तत् लै हृदय रखो रह निराल मताड़ी कहत कबीर सुनो रे संत हो धर्म दया कर बाड़ी का कवन काज सिर जे जग पीतर जन्म कवन फल पाया पव निध तारन तारन चिंता मन एक निमख न एह मन लाया गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिनकी प्रभ जियो पिंड धा दिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी रहाओ पर तन परती निंदा पर अपवाद न छूटे आवागमन होत है फुन फुन एह पर संग न टूटे जेह कर कथा होत हर संतन इक निमख ना की नो मैं फेरा लंपट चोर दूर मतवारे तिन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मो माही दया तरम अर गुर की सेवा ए सबन अंतर नाही दीन दयाल कृपा दम कृपाल दमोदर भगत बछल पै हारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुमाई जेह सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बकुंठ नहीं संसार निरपौ कै कर जाव है कर बजाव है तूर अनहद वाजह सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाओ जह सिमरन नाही ननकार हुक्म मुक्त करे उतरे बह पार नमस्कार कर हृदय माहे फिर तेरा आवन नाहे जह सिमरन कर है तू केल दीपक बांध तरयो बिन तेल सो दीपक अमरक संसार काम क्रोध बिख का डीले मार जह सिमरत तेरी गत होए सो सिमरन रख कंठ परोए सो सिमरन कर नहीं राख राख उतार गुर प्रसादी उतरे पार जे सिमरन नाही तोहे कान मंदर सो वै पंपटंबर तान सेज सुखाली बिकसै जियो सो सिमरन तू अंदन पियो जे सिमरन तेरी बा जाए बलाए जे सिमरन तुझ पोहे ना माए सिमर सिमर हर हर मन गाइए एहो सिमरन सतगुर ते पाइए सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास गिरास जाग सोए सिमरस भाग हर सिमरन पाइए संजोग जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइए संजोग जय सिमरन नाही तुझ पार सो सिमरन राम नाम आधार कह कबीर जाका नहीं अंत तिसके आगे तंत ना मंत राम कली कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नख सिख एह मन चीना तब अंतर मजन कीना पवन पवन पत

बेदार जागत मुसीयत हाउरे पाई निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ नींब पयो आंब आंब पयो नींबा केला पाका चार नाली एर फल सेबर पाका मूर्ख मुग्ध गवार हर पयो खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई कह कमीर कुल जात पाद तज चींटी होए चुनक चींटी होए चुन खाई बाणी नाम देओ जियो की राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनीले कागद काटीले गुड़ी आकाश मदे परमियाले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सडोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाव आनीले कुंभ पराईले उदक राज कुआर पुरंदरिये बस्त विनोद विचार करती है चीत सोगागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गौ चरावन छाडियले पांच कोस पर गौ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देओ सुनो तरलो तिलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सोरा चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत

शब्द अतीत नाहद राता अकल के कर जाओ गो रहाओ इड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो तीर्थ देख जल मह पैसो जी जंत न संतावो गो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए कट ही पीतर नाओ गो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो न कहावो गो नामा कह चित हर स्यो राता सुन समाध समाओ गो माय न होती बाप न होता कर्म न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कब न कहां ते आया राम कोई न किसी ही केरा जैसे तारवर पंख बसेरा रहाओ चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा परण वै परम तत् है सतगुर होए लिखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तौ ना पुजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाओ गंगा जाओ गोदावर जाइय कुंभ जाओ केदार नाइय गोमती सहो सहस गौदान कीजै कोट जाओ तीर्थ करे तन जो हिवाले गारे राम नाम सर तौ न पूजै अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नित है कीजै आ आत्म जो निर्माइल कीजै आप बराबर कंचन दीजै राम नाम सर तौ

राम कली बाणी बेणी जियो की इक्के ओंकार सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बस है एक ठाई बेणी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई संतो तहा निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोय तहा निरंजन रमैया होय रहाओ देवस्थाने क्या निशानी तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चंद न सूरज पौन न पानी।

0: साखी जागी गुरमुख जानी उपजे ज्ञान दुरमत छीजै अमृत रस गगन अंतर भीजै एस कला का जाने पियो पेट तास परम गुरु दियो दसम द्वारा अगमा पारा परम पुरख की काटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती जागत रहे सकबू न सोवे तीन लोक समाध पलोवे बीज मंत्र लय हृदय रहे मनुआ उल्ट सुन मैं गह जागत रहे न अलिया पाखे पांचो इंद्री बस कर राखे गुर की साखी राखे चीत गुर की साखी राखे चीत मंतन हर पै कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा विचारे अपना जन्म न जुए हारे असुरनी नदी का बंदे मूल पश्चिम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सो निचर चरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौमुख दीवा ज्योत द्वार पल्लू अंत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रहे मन मान करत ना मोहे मोहे गह गुह मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन तनी पंच शब्द निर्माइल बाजे ढुलके चवर शंख कन गाजे दल मल दैत हो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैप अहंगर प्रसाद राग नाट नारायण महला चौथा। मेरे मन जप अहनस नाम हरे कोट कोट दुख बहुकीने सब पर हर पास तरे रहाओ हर हर नाम जपे आराधे सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी महल हरे खिन खिर नर नारायण गावे मुख बोले नर नर हरे। पंच दुख असाध नगर मह एक खिन पल दूर करे वडभागी हर नाम ते आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रव जाचो मैं मूढ़ मुग्ध से निस्तरे कृपा कृपा तहर जग जीवन रख लेवो सरन परे जन नानक तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा राम जप जन राम मैं नाम रले राम नाम जपयो गुर बचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगमा गोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बल ले परखोत्तम हर नाम जन गयो गायो सब दालत दुख दल ले बिच दे ही दुख साध पंच धातु हर किए खिन पर ले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखे सस कमले उन वै कन कन कन हर गरजे मन बिकसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद पले। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदी सरहाम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखिया के बहु बार बार निमखे अवगने आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण खे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ सरनगे तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी हम राखो पाप हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत छीपा दृष्टार्यो गुण गावत छीपा दुष्टार्यो प्रव राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हो बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तुहर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह न सकह हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक को दया प्रभ तहारो हम सेव है तुम जन पगे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रवतारी मत गुर मत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जेव खेत किरसान लूने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही जान गुन जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपियो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तेंदुए बांध्यो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानके प्रभ बढ़ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवरणे हर हर दयाल दया प्रवतारी सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड़ आगम अगोचर स्वामी सब तुम ते आवे हम हर रुड़ने जिनको तुमरे बड़ कटाख है गुरमुख हर सिमरणे एह परपंच किया प्रभ स्वामी जग सब जग जीवन जुगणे ज्यों सल ले सल उठे बहु लहरी मिल सल ले सल सलल सामने जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरद उस्तत तारो हम कर है प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल क्योंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरावाल सब दाल द पंज दुख लाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का गृह हर आप सवारियो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल अपनी कृपा करी आप गृह आयो हर हम हर की गुर की है दसीठी हम देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंदो आनंद पै हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पै गुलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल सत संगत शोभा बंती सुन अकथ कथा सुख बंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कल जुग बिच उत्तम अत गुरमत कथा भजंती जन जन जन अप सुनी मनी है जिन जन तिस जन कह हो कुरबानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती जन नानकार कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिसको हो बल बल बाल सो हर जन है पल पहाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई चाह हर हा चाल अंतर कपट चुकावो मेरे सिखो गुर सिखो नेह कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर ते सिख मेरे हर पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट दुह दूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट महला राग नट
1: संत संग मेरे मन की विपरीत संत गुण बसा मेरा चित संत आग्या मन मीठ मेरा कमल बिगसाए संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन मंत संत प्रसाद मेरे बिखाए हंत मुकत जुगत एहा निदान प्रभ दयाल मोह देव दान नानक प्रभ दयातार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब के संगे नाहे दूर करण करावन हाजरा हजूर रह सुनत जियो जास नाम दुख बिनसय सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जन ताकि सेव करे जाके कर सगले समाहे जिसे बिरसा कोय नाहे जी जंतर करे प्रतय पाल सदा सदा सेव कृपाल सदा धर्म जाके दीबान बे मोह ताज नहीं किछ काण ਸਭ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜਾਪ ਸਾ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਸ ਮਿਲ ਹੋਵੇ ਉਦਾਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨੈ ਰਾਤ ਨਾਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਦਾਤ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਧਨ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਰਹਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਜੀਵਣੇ ਕਾ ਮੂਲ ਰਵ ਰਿਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੁਖ ਮਸ ਥੂਲ ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜ ਸਭ ਹਰ ਗੁਨਾ ਨਿਤ ਗਾਓ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਅਪਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਚਲਤ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰ ਰਹਾਉ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਹੈ ਥਾਪ ਥਾਪ ਦਾ ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਜੇਦ ਕਿਨ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾ ਤਾਰ ਹਰ ਸਰਣ ਆਇਓ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਗਮਿਆ ਮੁਰਾਰ ਕੱਢ ਲਿਓ ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਉ ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਤੂ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਗਲ ਮੰਡਲ ਏਕ ਸਵਾਮੀ ਸੋਏ ਕਰਨ ਹਰ ਜਸ ਨਿਚਰ ਦਰਸਨ ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਨ ਧਨ ਓ ਰਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੈ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧਨ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ ਰਹਾਉ ਤਨ ਤਨ ਮੇਘਾ ਰੁਮਾਵਲੀ ਤਨ ਤਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਢੈ ਕਾਂਬਲੀ ਤਨ ਤਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ ਤਨ ਤਨ ਬਨ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨਾ ਜੈ ਖਿਲ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਬੇਨ ਬਜਾਵੈ ਗੋਦਨ ਚਰੈ ਨਮ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਮੇਰੋ ਬਾਪ ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਤਨ ਕੇ ਸੋ ਸਾਂਵਲਿਓ ਬਿਠ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਕਰ ਤਰੇ ਚਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਹਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦਾਰੀ ਅਲੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਅੰਬਰ ਲੇ ਤੋ ਉਬਾਰੀ ਅਲੇ ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਲਿਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇ ਤਕ ਤਾਰੀ ਅਲੇ ਐਸਾ ਦਮ ਜਾਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੋ ਸਰਨਾਗਤ ਆਈ ਅਲੇ ਸਭੈ ਕਟੁ ਰਾਮ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ਰਹਾਉ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚਿੱਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾਰੇ ਪਰਣ ਵੈ ਨਾਮਾ ਭੈਨ ਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾਰੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾਂ ਸਦ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਤੁਹਾਰੀ ਆਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛੋ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ ਖਿਮ ਛਤਰ ਸਰਾਇ ਚੈ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੁੜਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾ ਭਰਮ ਫੁੱਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਕਿਤੇ ਦੁਖ ਪਰ ਫੁੜੇ ਪੂਰਵ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ ਵਿਛੜਿਆਂ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੁੜੈ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸਾ ਲਾਹੀਏ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲ ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਇਨ ਤਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ ਵੇਜੋਗੇ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ लिख दात जोत वड्याई मिरमाया सुरत गवाई मूरख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खस में पाना रहाओ ताज साज सहज सुख होई कर शरण रह न कोई किस खा जाय किस तर जाइए जे बोढ़ दुनिया आई है सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर से सुखाली सोवे हथी पौधी काहे रोवे कर कुमण वाणी पाई पाप पत्थर तरण न जाई पौ बेड़ा जियो चढ़ाओ कहो नानक देवे काहो मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मस वाणी बुरा भला दुए लेख पए त्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए त्यों गुण नाहीं अंत हरे चित चेतस की नहीं बाबरिया हर बिसर तेरे गुण गलिया रहो जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगै नित वासे छूठ समूड़े कवन गुणी काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया सन्नी चिंत पई भैया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तनेहा एक नाम अमृत देवे तो नानक त्रिष्टा स्वदेहा मर महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पदमन जावल रे पदमन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कभे ना जान सरे पखस से बाल बसस निर्मल जल अमृत न लख सरे रहो बस जल नित ना वस्तु अलियल मेर चचा गुन रे चंद कुमुंद नी दूर निवस स्वर पवकार नरे अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कब होना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे पंडित संग वसै जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कब न छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे एक पाखंडे नाम न रचे एक हर हर चरणी रे पूर्व लिखिया पाव स्नानक रचना नाम जप रे मर महला पहला श्लोक पत जपनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग अठ सठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जस मस्तक भाग शबद सखी सहली गर्व गहली सुन सकी एक बात सहली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बन ज्यों न रह कैसे राखा माई रहा

हरे केते तेरे राग परिस्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनु इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले

संतोखी गावण तुदनो वीर करारे गावण तुदनो पंडित पढ़नरख ईश्वर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग बाछ पयाले गावण तुदनो रतन पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावण तुदनो जोध महाबल सूरा गावण तुदनो खाणी चारे गावण तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भाव है सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड़ा आखे सब कोए केवड़ वड़ा डिठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के वड़चीरा रहाओ सब स्वरती मिल स्वरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखां कियां वड्याईया तुद विण सिद्धि किने ना पाईया करम मिलै नाही ठाकर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तसाय क्या चारा नानक सच सवार नहारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागै भूख उत भुखै खाए चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड़ा ना होवे घाट ना जाए ना ओ मरै ना होवे सोग देंदा रह ना चुकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होवा ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके
ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ।

रहाव। जाप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साद ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम

एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभ्यो बाच बेनती छापई अमरी करो हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा अमरे दुष्ट सवै तुम गावो आप हाथ द मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवाए करतारा मोर अच्छा निज कर द करह सब वैरण को आसंगर पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबर है मरण काल का त्रास निवर है उजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करो रक्षा राख लियो मैं राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहोपुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर भिषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसहि को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुन सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सफल कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के बट बट की जान जबद कर।

रहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिम

जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ घुम जाया वे आप छुट्टे परवार स्यों सब जगत छड़ाया।

0: गुरु प्यारी तो इस बारी गुरु साध संगत जी इतनी हाजरी प्रवान करनी क्योंकि दासियां दा अज अखीरला शाम का समागम है। कल तो असी न्यूयॉर्क में चले जाना है। आप संगत ने बहुत प्यार बख्शिया, बड़े एकाग्र चित हो के गुरु की बाणी श्रवण कीती है, गुरु की बाणी ग्रहण कीती है। भगत कबीर साहब जी का बयान है, बचन है। भगत साहब जी कहते हैं, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। कोई गाने वाला चित ला के गावे ते कोई सुन वाला चित ला के सुने ते भगत कबीर साहब कहते भी कोई संसा नहीं, कोई शंका नहीं, दो रावां नहीं, दोवें ही परम गति नूं प्राप्त हो जाएंगे। पर गल यह है कि सुरत शब्द का मेल होना चाहिए, सुरत टिकनी चाहिए है। तो सुरत तां टिकती है जे सुरते टिक के बैठे हो, जे सुरते भजे फिरन जां गल्लां करन बीबियां आपस विच, जां वीर आपस विच कोई फोन सुने कोई गल्लां करे, जे सुरतियां दी सुरत नहीं टिकती ते गाउण वाले दी नहीं टिकती। सत्संगत माफ करना, भावें कितनी भी कोशिश कर लीए कई बार माहौल नहीं बनता कीर्तन का। बड़ी कोशिश करी दी है भी गुरु की कीर्ति करिए, सरोते टिक जान पे करी, सरोतियां का मन खिंडिया हुंदा तो साडा भी खिंड जाता। पर इस स्थान पर गुरुद्वारा साहब फ्री माउंट दीआं संगतां मैं देखदा तुसीं बड़े एकाग्र चित हो के बाणी सरवण करदे हो, तुहाडा सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्नवाद है। बीबिया ने, भैणा ने, भरावान ने, सारिया ने बड़ा सहयोग दिता है, बड़ी भावना नाल गुरु की कीर्ति सरवण की है। सतगुरु मेरा आमत करन सब का गाव्या सुनिया थाए पौन, सब नूं दरों करों सिखी सिद्धक भरोसा ते नाम की दात बख्शन। सो मेरे को आप संगत नाल गुर शब्द द्वारा सांझ पाउंदिआं विचरदिआं हो सकदा बेअंत भुल्लां होईआं हो, ना चितारनियां अरदास करनी सतगुरु समत बख्शन। इस तरह आप संगतां दी देश विदेश विच विचरदिआं होईआं सेवा करन दा सुभाग बणिआ रहे। गुरु रामदास महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी चढ़दी कला करन, अपना सिर ते मेरा पर हथ रख के सवावां लैंदे रहन। सो सत संगत समुचे प्रबंधकां दा वी धन्नवाद है जिन्हां सदका आप संगतां नाल ये सांझ बनी है। क्योंकि मैं जिन्नी वार भी आता सी न्यूयॉर्क वाले पासे भी वापस मुड़ जाता सी, इधर नूं कभी आया नहीं, ये फस्ट टाइम है। तो फ्री माउंट पहुंचे हाँ, आप संगतां नाल गुरसिख द्वारा सांझ पाई है। मैं पंज चार मिनट भाई साहब उन्होंने उपर लै गया, सो माफ़ी चाहना भुला चुका दी खिमा जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत मैं बेनती करदा ना कि बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह केवल दो सन, केवल दो, ते दोवां कोलों लकड़ दे छोटे, कुछ भी नहीं कोल, कोई कृपाण नहीं, कोई वड्डा हथियार भी नहीं, ते जकारे छड़ छड़ के उन्होंने बिपता पा सकी पठाणा नूं। उन्होंने सोचा भी पता नहीं किन्नी क फौज है, एडे गज वज के जकारे बुलाए उन्होंने, इन्नी धड़लेदार फतेह बुलाई। तो तुम जो भी मूँह फतेह बुलानी हो मूँह थले कर लेंगे, फतेह का जवाब फतेह देंगे नहीं। ये एक बहुत वड्डी साडी कमजोरी है जां साडी घाट है। क्योंकि गुरु साहब जी का उपदेश है, आगे आवत सिंह जो पावे वाहेगुरु की फतेह बुलाने। तो जो बुलारे ने तुम फतेह ना बुलाओ तो उन्होंने इंज महसूस होंगे भी जिदा तुम्हें कोई आनंद नहीं आया, तुम टाइम पास किया, तो असं भी टाइम पास करके स्टेज तो उतर चले। मैं बेनती करता ना जो भी कोई फतेह बुलावे तो फतेह का जवाब फतेह में जरूर दिया करो। एक बार फिर कृपा करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संघ जी आप जी पितृबाणी शब्द कीर्तन राय जोड़े सन भाई सुखजीत सिंह जी कुआड़का हजूरी रागी साचखंड श्री हरिमंदर साहब वाला कीर्तन जथा। भाई साहब जथे बहुत बहुत धन्यवाद। आउन भाई साहब डॉक्टर चरण कमल सिंह जी डायरैक्टर गुरबाणी फाउंडेशन वाले आप जी ने कथा कीर्तन राय जोड़न। भाई साहब जी का कल का समा ਦੁਪਹਿਰੇ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਵਜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵੀ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਡੇਢ ਵਜੇ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨਾ ਹੈ ਅਮਨ ਨਾਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

इस एकंकार नूं, इस एकंकार दी होंद नूं पसरिया होया कायम दायम सत नाम कहा है। नाम दी परिभाषा गुरु साहेब कहंदे विण नाम है ना ही को था, ऐसी कोई थां ही नहीं है जिथे नाव ना होवे। ये फिर केहो जा नाव हो सकता है जो हर थाई है सब माही है। ये नाव ता वो करतार ही हो सकता है, एक अंकार ही हो सकता है। अनिक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार।

एक बारीक नुक्ता है। एक पासे गुरु साहिब सानू कहंदे है अकली साहिब सेवी है, ते इस दे विच होर नुक्ता है सेवी है। जेड़ी सेवा सानू समझ आउंदी है ओ सेवा है जोड़ियां दी सेवा, लंगर दी सेवा,

बादशाह ने सानू जड़ा राह दिखाया उदे विच अंदर वड़ के भगती करन वाला नहीं है, सामने खड़े होके बाबर नू जाबर कहन वाली भगती पातशाह ने सानू दिखाई है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ, ये बाणी गुरु नानक पातशाह दी है। तो सिर ते तली तरना ए इसका मुड गुरु नानक पातशाह का है। जिस करतार दी बात गुरु नानक पातशाह मनुखता नूं दस रहे हैं उस करतार नूं ही थापन लगे हुए ने। पातशाह नोटिस लैंदे ने, थापिया ना जाए थोड़े करण नाल नहीं हो जाना, कीता ना होए, वो तो आपे है, वो तो सत है, वो तो पहला तो है, वो तो खंडा ब्रह्मंडा तक सारा पसारिया होया है, मेरे करण नाल ही है। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप सहपन, आपे आप निरंजन। जिस माया च तू गलतान है तू नहीं राम पैदा करना, वो निरंजन है। अंजन माहे निरंजन असी रहना है, वो निरंजन है। आपे आप निरंजन सोए जिनी सेविया। सेवा नु संभालना बड़ा जरूरी है। शब्द संकल्प बिन शब्द है तो बौरे होए फिरदे ने सारे, ये जग बौरा। जिन्नी सेविया तिन्नी पाया मान, नानक गावी है गुणी निधान। गाविए दा भी एक परत है, गावना दा गावना तो है ही है, गावना दा भाव समझना भी है। गावे को विद्या, विद्या नु गावना, विद्या नु समझना, स्टडी, स्टडी दा एजुकेशन, एकेडमिक। गावे को विद्या, लिखिया गावे है समझना। पातशाह समझण नु सानू पांत पांत तरीके नाल दसदे ने, समझ समझ, जप समझ, सुने तरत तवल आकाश समझ, समझ के धरती का असल तवल कौन है, वो नहीं है जड़े दसी जाते ने। सुने फिर धारण कर लै मन। जप जी साहब च चार सुने ते चार मन्ने दिया नहीं हैं, चार सुने तीन मन्ने एक मन्ने दिया पौड़ियां हैं, की फर्क है। पातशाह कहते मन्ने की गत कही ना जाए, मन्ने दी अवस्था ते जड़ा पहुंच गया उदी बात गत कही नहीं जा सकती है। राइटिंग ऑन द वॉल पीरियड, नहीं कही जा सकती। पर मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने दी अवस्था का बयान है तो मन्ने हो रहा है, मन्ने हो रहा है। तीन पौड़ियां मन्ने एक पौड़ी मन्ने। कल दोपहरे जपजी साहब की बात अगे तोरांगे और कल दोपहर नो जिस तरह भाई साहब ने अनाउंस भी किया, कई सालों के अध्ययन तो बाद जपजी साहब साड़ी आधार बाणी। जे असी अपने बच्चियां नो जपजी साहब उन्हां नो समझ आने वाली शब्दावली विच अपना तत् ज्ञान जे दे गए ता एहो जी उंगल है बाकी सारा लीड़ा पे फड़ लेंगे। जपजी साहब दे नाल जोड़ दे। कल जपजी साहब दी ऐप गुरबाणी फाउंडेशन वालों
ਸਾਲਾਂ ਬਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਖੋਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਡਕਾਸਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਇਜ਼ ਹੈ, ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਨੇਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾਇਓ। ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਡੀਟੇਬਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਥਰੈਸ਼ਡ, ਵੀ ਵਿਲ ਥਰੈਸ਼ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਲ, ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ ਇਨ ਟੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1000 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਓ। ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ।

थोड़ा जहा जिन्न ते जिन्नी तिन ते तिन्नी। गुरबाणी विच जिन्न दा भाव है जिन्ना ने, जिन्नी दा भाव है जिसने। इन्हों जे असी नाल ले चलिए बात होर दी होर है, क्योंकि जड़ी कीमती वस्त है वह पातशाह कहिंदे ने जिसने सांधी। असी कहिए जिन्ना ने सांधी, कह नहीं रहे पर कह रहे हैं, क्योंकि जिन भी है गुरबाणी विच हमेशा बहुवचन। जिन्नी भी है सिहारी वाला, बिहारी वाला जिन्नी भी बहुवचन है। सिहारी वाला जिन्नी किवें बोलना है, जज्जे नूं जोर देना है जिन्नी।

भी है सुनिए, जब तक कला कला शब्द गुरबाणी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे हर शब्द की प्लेलिस्ट है, हर शब्द दिया वीडियोस ने दस गावन दा भाव की है, गावन इन गुरबाणी, सेवा इन गुरबाणी, मन इन गुरबाणी, दो बात आ गई, सुनिया इन गुरबाणी, गावी है सुनिए। आम तौर पर कहेंगे आपे गाइए उच्ची उच्ची सुनिए, नहीं समझिए बुझिए गावी है सुनिए, क्योंकि मन की बात ने मन रखी है भाव विचारा।

नानक नीच कहे विचार। गुरु साहब सानू निम्रता सिखाउंदे ने पांत पांत तरीकियां दे नाल। सानू कोई कह जाए ना कुछ, असीं कहिंदे शुक्र है किसी ने सुनिया नहीं, शुक्र है किसी ने देखिया नहीं। पातशाह नूं जो किसी ने कहा, भावें सिद्ध गोसर च कहा, उन्होंने उही शब्दावली लिखी। फिर एक लिखता, कोई आखे पूतना पूतना, को कहे बेताला, उदों किसी ने क्या होना है, पर गुरु साहब लिख गए, रहती दुनिया उसनों देखती है कि एक गुरु साहब ने लिखा। असी गुरु साहब के कदमां ते तुरदियां किस निम्रता तक पुज सकते हैं, ते कित्थे हां कित्थे जाना है। जे हो जाना, हो दा मतलब गुरबाणी हमेशा मैं हुंदा है। जे हो जाना, जे मैं जाना, जे मैनू पता भी होवे ना सारा कुछ, ते मैनू आखना ही नहीं आउंदा, आखा ना है, कहना कथन ना जाई। असी कहने मेरे तो वड्डा बुलारा कोई नहीं है, गुरु साहब साडे कहिंदे मैनूं आखना ही नहीं आउंदा है। गुरु साहब कहिंदे गुरा मैनूं थोड़ी सोझी दे, जपदा गाडी रा हमेशा समझण बुझण जानण तों हिलदा ही नहीं है। गुरा इक देह बुझाई, सब नाजिया का एक दाता, तू दाता दातार तेरा दिता का, सो मैं

इतनी सेवा प्रवान कर दी। कल 1:30 बजे की हाजिरी है, उपरंत जपजी साहब संगत नो अर्पण करना है। इस ऐप राही आप संगत का थापड़ा आशीर्वाद और संगत के घर विच जिहड़ी साडा पनप रहा साडा भविख है उन्हां तक गुरु की आवाज़ नू ऑथेंटिक मैसेज बिना डुल्ले बेरां नू कठियां करके यह सांभिया होया तुहाडे तक पहुँचाना है। आओ उस दे लई आप जी सहयोग करना, आप जी दसना, जो गलतियां कीतियां वो जरूर दसना ताकि सुधार करके संगती राय दे नाल असी बच्चों चंगा भविख उन्हां दी चोली दे सकीए।

हर हर नाम जपत कोल सगले तारे राम। हर नाम जपत सुहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना। हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गय कंठ लाए प्रभ ऊच अघम अपारे। बिनवंत नानक सबल सब किश

पंजवा मन मह चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत सोहिला

सुखदायी पूर्ण परमेश्वर कर कृपा रखो मान देह प्रीत साधु संत स्वामी अर्गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान

बेसरत नाहे मन्ते हरि अभय प्रीत महाप्रबल पई आन बिखे जरी रह बूंद कहाँ त्याग चात्र मिन रहत न करी गुण गोपाल चार रतना टेव एहे परि महानाद खुरंक मोहयो बेद तेखन सरी प्रभ चरण कमल रसा नानक गाठ बांध तरी।

कविदाता हर प्रेम भगत जन बेदयास आन कत जाही बिन बिछवाना से जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रहिए दुख किन सहिए चातर गबूंद प्यासिया कबरन बिहावे चकवी सुख पावे सूर्य किरण प्रकाशिया

प्राणी हार जाप जन्म गायो सास सबद में कबना चोट बरता जन्म पायो रहो तर में काम क्रोध हो ममता कठन पीर अत पारी गुरमुख राम जपो रस रचना इन बेतर तो तारे बहरे करना कल्प हो चिस शब्द सहज नहीं बुझिया जन्म पदार्थ मर्म खारिया बिन गुरियां दना सुदिया रायो दास आस निरास सहज त्यान बैरागी

विनोद महाराय दांडक मंडल सिखा सोत तो ते तीर्थ गवन अत परमन कराय राम नाम बिन सात न आवे जप हर हर नाम सो पार पराय।

ताजनम गवाया नानक से पूरे बड़ पागे सगर सेवा लाए जो इच्छा सोई पर पावे गुरबाणी सुख पाए पैरों अल्लाह तीजा।

सेजन मला ज्वर लागे नाम तेरे प्यार तिन किरण मिलता मस्तक लाए जन सतगुर पूरा त्याया नानक तिन किरण पूरे भाग पाया जिन राम नाम चित लाया प्यारो महला तीजा सब विचार सोजन सचा जिन के हृदय सचा सोई

मन मुख मूल गुवावे लाभ मांगे लाह लाभ कितो होई जमका सदा है सरियो पर दूजे पाए पर गोई बैले बेग पवे दिन राती उमे रोग न जाई पड़ पड़ लुजे बाद बखाने मिन माया सुरत गवाई सतगुर सेवे परम गत पावे नाम मिले वडियाई नानक नाम जनाम वसिया दल साचे पद पाई परम अल्ला तीजा मन मुख आसा नहीं उधर दूजे पाए कुआए उधर न सहण न परिय कबो तस्नागन पचाए सदानंद राम रस राते हृदय नाम दुविधा मन पागे हर हर अमृत तेरा

गुरुमुख प्रगट हुआ मेरा हर भवन हर गुण गाए सुदाता हरे कै होर थै सुख ना पाए सतगुरु जिन ना सेव्या दाता से अंत गए फिरताए सगुरु से सदा सुख पाया फिर दुख न लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होए ज्योति ज्योति समाए पैर मोहला तीजा बाद गुरु जगत बहरा ना भुला झोटा खाए मन मन जमे सदा दुख पाए दर के खबर न पाए मेरे मन सदा रहो सत

सत्संग साहिर तेरे जित हर कीरत हर सुनना जिन हर नाम सुनया मन पिना तनाम सरे मैं नित चरण जग जीवन हर त्याय तरण अनेक संग नाम हर तेरे न जाई देवायत गण राव गुरसिख हर बोलो हर गावो लगम तर जपने सो उपदेश सुन गुर केरा सो जन पावे हर सुख कणे

राहु निकन देखे पर गजाए दरबहरे मिथ्या करकाए पैठ गोरी अर्थंग ना जानिया वाहगुरु है परम बुलानिया निकन जाने बोले कूड़ माया मोह मिटाए मूड़ अंतर वस दिस अंतर जाए वाहगुरु है परम बुलाए जिसमें

0: काटनहार मन वसाय तो प्रभु निर्कर बसर
1: संजाचक प्रभु सेवन पार गुण निधान बेअंत अपार अपना हर हर नाम चले गुरु अपने के अरदास कर ਜਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ

गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु।

दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई।

दुख संसार खोवे गुर नौनद दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सो कहो टाल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जा

जन्म मरण दुख जाए, वाहे गुरु साहिब जियो सोरठ महला पंजवा। कर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल पोयंगम सादे पंच जनास्यो संग ना छुटक्यो, अदक अहम बुध बादे। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल पोयंगम सादे पंच जनास्यो संग ना छुटक्यो, अदक अहम बुध बादे। प्यारे इन विद मिलन ना जाए,

जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक ये रंग माता प्यो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन ये मन राता तेरो सेवक ए रंग माता

ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमंत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का ने विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा संजागत ब्रह्म ज्ञानी अमुद्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस वट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज जय महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व काटा कर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सवे उपरहार ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार ब्रह्म

उदार जो अंतरनाम सर में दिखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारे नानको आपर सकल निस्तारे अष्टपति मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रीत नंजन दर्श पर दरिया रूप न विखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर्ण ना सुने काउ की निंदा सब ते जाने आवस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मनते डरे इंद्री जत पंच लोक ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस बैस नो सो जैसे ऊपर सो प्रसन्न मिशन की माया ते हुए पहन कर्म करत हो वे न कर्म तेस बैस नो का निर्मल धर्म का बल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत की संगराचे मंत ने अंतर सिमरन गोपाल सवे ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर है नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मंत ने अर्पे बिशन प्रीत हर के चरण हृदय विसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम आत्मे सोधे राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय विसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख में जाने अस्थूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सत्संग भावे जन को हे कर कृपा अंतर उधारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे सर्व रोग गाओ खुद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाव काओ जुगत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार का निवास का नाम सत राम दास आत्म राम दुष्नदरी आया दात संतन भातन पाया सदा निक निक डर जान सो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्मिता वे जीवन मुक्त सो कहावे तैसार्क तैसा सोग सदानंद नहीं विजोग तैसा स्वर्ण तैसी माटी तैसा अमृत तैसी बिकाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक हो पर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले टाओ जिस जित कर राखे तैसा तिन्ना आपे कर्ण करावण जो प्रभ पावे सोई पुनोग पसरे हो आप हो अनंत रंग लखन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता बना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारावार नानक रचना प्रवरची बहुदे अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट चार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट मन भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तभी स्रोते कई कोड़ आत्म ध्यान धार है कई कोड़ गव का विचारे कई कोड़ नवतन नाम ध्यावे नानक करते का अंतर भावे कई कोड़ भय अभिमानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ कृपन कठोर कई कोड़ पग आत्म निकोर कई कोड़ पर धर्म को हरे कई कोड़ पर दुख न करे कई कोड़ माया शरमाए कई कोड़ पर देश प्रमाए जित जित लाभो तित तित लखना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जती जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्वो पाए कई कोट पादर बिरख निभ जाए कई कोट पौन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सुन खतर कई कोट देव दान मिंद्र सर छतर सर समग्री अपने सूत धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज तम साध कई कोट वेद प्राण सिमृतर शास्त्र कई कोड़ की ए रतन समंद कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ की ए चरजी वे कई कोड़ गिरी मेर स्वन थी वे कई कोड़ जा किन विसाज कई कोड़ भूत कई कोड़ भूत प्रे सुकर मनगाच साक्ते नेरे सबूते दूर
ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਨ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਬੈਰਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤੇ ਨਿਵਲਾ ਕੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆਤਮ ਮੇ ਪਾਰ ਬਮਲਾਂਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਸਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਮਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਟ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਸਰੇ ਉਪਸਾਰ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਵਾ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾ ਤਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਮੰਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਭੇ ਸਤ ਸਦੀ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਤਮ ਰਸ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਬਲਿਆਰ ਨੇ ਜਲਥਨ ਮਈਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਗ

स्वामी के लिए विकसे अंतर्यामी। जो पावे सो कार करावे, नान दृष्टि अवना आवे, कहो मनुख दे क्या हो आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ हुए तो सब कुछ ले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत विखिया में रचे, जे जानते अपना बचे, पर मैं भूला दे दिस्तावे, निमुख माए चार कुंड फिर आवे। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नान ते जन्ना मिले, खिन में नीच कीट को राज पार, ब्रह्म गरीब जाका दृष्ट कशु नावे, दिस तत्काल दय दिस प्रटावे, जाको अपनी करे बख्शीश। ताका लेखा ना गणे जगदीश, जीव पिंड सब दिसके रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाए, नानक जीवे देख मटाए, इसका बल नाए सात करण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष भावे सोई फुनतीयो, कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सोग हरख रंग हसे, कबू निंद चंद व्यवहार, कबू अवकाश प्याल, कबू बिता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनार।

palabra gave. ज्यों प्रभरा कहते वीर गुर प्रसाद नान सच कहे कबू हो पंडित करे व्याख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तर तीर्थ स्नान कबू से साधक मुख ज्ञान कबू की रहस पतंग हुए जिया आनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवे नचावे जो तिस भावे सोई होए नानन दूजा अमन कोहे कबू सात संग देव पावे उस स्थान ते बोर ना आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश

फिर के अगर किया जद सै दरबार मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए किता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवे

मैं विसर ना जाए। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाणे के नाए करी। जे तिसठ्यो पाई वेखा, बिन कर्मा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणक, देख गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता।

नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत सुनया इतर ब्रह्मा इंद्र सुनया मुख सलाहन मंद सुनया जोग जुगत तन भेद

देखो कह कर विचार करत क्या करना नाही सुमार तौल तरम दया का पूत संतोखता प्रख्या जन सूत देखो बुद्ध।

कितन सुअलह रूप किति दात जन कौन कूत कित पसाओ एको कवाओ तिसे होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई परिकार तो सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रन्मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दाचार असंग सूर मोह पाख सार असंग मोल विलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध खोर असंख चोरा राम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलबड़ा त्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कुड़ियार कुड़े फेराए असंख मलेश मल पख खाए असंख निंदक से करह पार नानक नीच कहे विचार

Asankh nama, asankh thav, agam, agam, asankh lo, asankh asir par hoy, akhri nama, akhri salav, akhri gyan gita gunga, akhri likhan bolan baan, akhra sir sanjog vakhan, jin eh likhe tisr nahe, जे परमाए तब तब पाहे जेता किता तेता नाओ वृणावे नाही को थाओ

सब गुण तेरे में नाही कोए, बिन गुण किते भगत न होए। स्वासा बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मंचाओ। कवन सवेला वखत कवन, कवन थित कवन वार। कवन सरुति मा कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती दे होवे लेख पुराण। वखत न पायो का ध्यान दे लिखन ले कुरान। थितवार न जोगी जाने, रुतमा न कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाना सोई। किव क्रिया का किव साला है, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखन सबको आख, एक दो एक सियाणा।

सलाहि सलाय तिसरत न पाइया नदियां ते वा पवै समुद्र न जानिया समुद्र सा सुल्तान गिरह से माल तन केड़े तल न होनी जे तिस मन हो न विसरह।

अंतरंजापकिता आकार अंतरंजापरावार अंत कारण कहते बिललाए ताके अंत न पाए जाए।

आपे जाने आपे दे आखें सिफ के जिसनो बख्शें सिफत सैला नानक पातशाही पातशाह।

इत किते होर कर है ताय आख न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोर बिगाड़ तै लिखिए सिर गावा रंगावार सो दर कहा सो घर कहा जितवै सर्व संभाले वाजे नादन का संखा केते बावन हारे केते राग परि स्यो कहियन केते गावन हारे गावे तोनु पुण पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख दान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवे सो सदा सुवारे गावे इंदा दासन बैठे देवत्यां दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जते सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सुर जग जग वेदा नाले गावे मोनिया मन मोन सुरगा मछ पयाले गावन रत्न पाए तेरे अर्थर तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तनु गावे ज्योत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई हैप्पी होसी जाए ना दासी रचना जिन रचाई रंगे रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या किता अपना जिवते दी वडियाई ज्योत पावे सोई कर से हुकम ना करना जाई सो पात साह साप साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोष रंप चोली ध्यान की करह प्रभूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत आई

भोगत ज्ञान दया भंडारण कर करवा जयनाथ आप नाथ नाथे सब जाके रस देव रासाद संजोग विजोद कर्त लावे लिखे आवे भागो आदे तिसे आदे साधन नील नाद ना जुज को वेश एका माई जुगत व्याई तिन तिल परवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिवत पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमाण ओ हो वेख नानद नयावे बहुताए होवे डाण

एक दूजे पर लख हो है लख हो मैं लख वेश लख लगेड़ाया किया एक नाम जगदीश ए तराहे पद पवड़िया चढ़िया होया केस सुनगल्ला आकाश के किटाया रेस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै न जोर जो न मंगण देण न जोर जो न जीवन मरण जोर जो न राज माल मन सोर जो न सुरति ज्ञान विचार जो न जुगति छुटाए संसार जिस हद जोर कर वेखा सोए नानक उत्तम नीच न कोय राते रुते थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिसवें तरते त

ताकि अगला कतिया न जाए, देखो कह पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुर तुम आत्मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सदा की सुध। कर्म खंड के बाणी जोर, तिथे और न कोई होर। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। तिथे सीतो सीता महमा माहे, ताके रूप न कथने जाए। नाव मरे न ठाके जाए, जिनके राम वस मन माहे। तिथे भक्तो संख्या लो कर सच्चा मन सोए। सचखंड वस निरंकार, कर कर वेख निहार। तिथे खंड मंडल वर पंड, देखो कथा तयंत नयंत। तिथे लो लो आकार, देव देव हुकुम देवै स्वीकार। विख्या विषय कर विचार, नानक कथना कर डासार। जत भारत तिर सुनियार, अरण मत वेद हथियार। पौ खला गंतवता पांडा, पौ अमृत ताल। कड़िया सब सचि टकसाल, जिनको नजर कर

जी एकोंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाग पातशाही दसवीं शपे छंद त्वै प्रसाद चक्र चेहन हर बरन जात अर पात नहन जय रूप रंग रेख भेद को कह नान सकत कह चल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कहि जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन त्रिण कहत तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद नमस्तम काले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम नूपे नमस्तम भेखे नमस्तम लेखे नमस्तम काये नमस्तम जाए नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्तम कर्म नमस्तम धर्म नमस्तम नाम नमस्तम धाम नमस्तम जीते नमस्तम पीते नमस्तम बाहे नमस्तम डाहे नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त शेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उधारे नमस्त पारे नमस्त सो एके मस्त अनेके नमस्त पोते नमस्त जुपे नमस्त निरकर्मे नमस्त निर्वर्मे नमस्त निर्देशे नमस्त निरपेशे नमस्त निरनामे नमस्त निरकामे नमस्त निर्दाते नमस्त निर्गाते नमस्त निर्दूते नमस्त भूते नमस्त अलोके नमस्त अशोके नमस्त निरतापे नमस्त थापे नमस्त त्रमाने नमस्त निदाने नमस्त गाहे नमस्त बाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त संयोगे नमस्त रंगे नमस्त भंगे नमस्त गम्मे नमस्त सतरमे नमस्त जलाश्रय नमस्त निराश्रय नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त सत अजवे नमस्त मजवे नमस्त सप्त अजवे आदेश संदेशे नमस्त पीसे नमस्त निर्धामे नमस्त निर्बाने निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सत देवे नमस्तम भेवे नमस्त जन्मे नमस्त सो बनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्तम वरने नमस्तम मरने नमस्त जरार नमस्त कृतारम नमो सर्व तंदे नमो सतबंदे नमस्त निसाके नमस्त निर्वाके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंते नमस्त महंते नमस्त सतरागे नमस्त सुहागे नमो सर्व सुख नमो सर्व पोख नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी शंत प्रसाद अरूप है नूप है जू है भू है लेख है पेख है नाम है काम है दे है बे है जीत है पीत है त्रमान है दान है तिर वर्ग है सर्ग है अनिल

अनंगे नाते नुसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नाम समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति विभूते क्लंकम नाने क्लंकी स्वरूपे नमो राज विश्रम परम रूपे नमो जोग विश्रम परम सिद्धे नमो राज विश्रम परम विरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जयश्रम परम ज्योते नमो नत नारायण क्रूर वर्मे नमो प्रेत परे देव धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह नमो भूपे नमो दान दान नमो मान मान नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रं सदा सजदानंद सर्वप्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी

सर्वभाने सर्वमाने सर्वं त्राणं सर्वभुक्ता सर्वयुक्ता सर्वदेवं सर्वपेवं सर्वकाले सर्वपाले अर्वाचं त्वत्प्रसाद आद्रूपनाद मूर्तजोन पुरखपार सर्वमान्त्रमान देवेवादुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपनकाल जतर ततर विराजी अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख आधार मूर्तजोन आद शेख देश और न पे जाकर

प्राण सर्व त्राण सर्व कर्म सर्व धर्म सर्व युक्ता सर्व मुक्ता सावण छंद प्रसाद नमो नरकनाशे सदेव प्रकाशे नंगं स्वरूपे अनंगं स्वरूपे भंगे परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे निर्वाह अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी इनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निसाक्षरी कह मितो अमी कह सेम प्रवाह है जय है जा है भक्ति शंत व प्रसाद के जाहज जहूर है के हाजर हजूर है मे सल सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के उसल चिराग है के कामन करीम है के राज कर रहीम है के रोजी दहन है के राज कर हिंद है क्रीमल कमाल है के हुसल जमाल है के नीमल कराज है गरीब निवाज है हरी फुलस्किन है राजन है कलंक मृणास है समस्त निवास है गंजल गनीम है रजाय कर रहीम है समस्त जबां है के साहिब करा है के नलकम प्रणास है बैस्त निवास है के सर्वल गवन है मे सर्वन है तमाल तमीज है समस्त रजीस है परम परमीस है समस्त रधीस है रे सर लेख है मे सल पेख है जमीन जमा है मी कलमा है क्रीमल कुमाल है के सूरज जमाल है के अचल प्रकाश है के मितो सुभाष है के अज स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो वसा है के आत्म प्रवाह है के अचल अनंग है के मितो अपंग है मधुबार

घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन सजगात आज न बात अन सजगात अन बात अन ठुट पंडा न ठट पारा डीठ धर्म अदीठ कर्म अन मन नंत दाता मंत हर बोल मना संत द्वार प्रसाद गुरु नालिये है हर कालिये है कल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के धरन है जग के कर्ण है मन मानिए है जग जानिए है सर्व पर है सर्व कर है सर्ववासी है सर्वनाशी है कल ना कर है बेसंबर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंड से कल खंड से परते पर है कल ना कर है जपा जपे तपा तपे अकीर्त कीर्त है अमृत अमृत है अमृत अमृत है कर्ण कीर्त है कीर्त कीर्त है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकीर्त कीर्त है अमृत अमृत है आजव कीर्त है अमृत अमृत है नर नायक है कल कायक है बेस्वंबर है कुंडल्य है निरपनायक है सर्वपायक है पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता करें अर्धार है परमात्म है सर्वात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रजा छंद नमो सुसूर्य नमो चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो वी वी जय

ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलाकृता नमो चांद रूपे नमो इंद्रे नाद भूते कलंकम नाने कलंकी स्वरूपे नमो राज परम रूपे नमो जोग जवेश्रम पर सिद्धे कलंकर रूपे अलंकर लंके नमो आसासे नमो बांग बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी एकामे एक श्री छंद अजय लय अभय अभय भू अजू नास कास गंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेख नाम काम गा अडा नाते परमाते जोनी मोनी नराग नरंगे न रूपे न रेखे अकर्म परम गंजे लेखे भजंग बजा छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणा से गंजल नामे समस्तल निवासे निकाम विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद सदर्म प्रणासी क्रीम कुनिंदा समस्तल निवासी जाए विभूते गजाए गनीमे हरियंग करियंग क्रीम रहीमे चतर चक्रवर्ती

गए सदा शिव नंकार का चिंत न पिव। आप अपनी बुद्ध जेती बन भिन्न भिन्न तोये तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विजा प्रतम संसारा ए कै रूप अनुस रूपा रंग प्यो राव के भूपंड जेरे से किन्नी तुष्कान बोरा दीनी कौ भू राजा बैठा कम सिंह प्यो शंकर गैठा सगरी सिर दिखाए चंबवा जुगा सरू स्वम्ब और चमेरी तुम करो सिखो हर सिर संगरो दुष्ट देव पाता सगल मलेश करोण काता जे अस्तुता सरणी परे दिनके दुष दुख तुम मरे पुरुष जीवन पवरे तिहारे दिनके तुम संकट सब डारे जो काल को एक बार आई है ताके काल निक न रक्षा हो सकाला दुष्ट रिष्ट तत्काला कृपा करिय पर जमाता कृपा दृष्ट तन जाय न हरियो ताके ताप तन गुम हरियो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुशास हो सकन कोई एक बार जिन तुम्हे तुम्हारा काल पास दे दाय उबारा जिन्ना नाम तिहारो कहा दार दुज दोग ते रहा खड़गेत में सन तिहारी आप हां दे ले ओ भारी सर्वठौर मोह साई दुज दोग ते ले जाए कृपा करी अंबर जम माता ग्रंथ करा पूर्ण सम्राता किलवे सकल दे को अर्था दुष्ट दोग इन कोजा करता श्री दूजा पै दे अल्ला पूर्ण करा ग्रंथ काला मान बांछित बल पावे सोई दुख न दिसे व्याप्त कोई अड़ेल सुने गुंग जो जाय सरस न पावे इसने मूर्छित लाज चतरता आवे दुख दर्द बौनिक नद नर के हे नानक सोजन जो नानक सोजन पौनिक ना तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपे को कहे चौपे समस्त सहजपुण जय अर सहजपुण तीन के जय भाद्रो सुधी अष्टमी रविवारा तीर्थ तत्वगण सुधारा स्वय पाएंगे जबते तुमरे तबते को आंख तेरे नियान्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक रामान्यो सिमरत शास्त्र वे स्वे वो भेद कह एक न जान्यो श्री स्पान कृपा तुमने कर मैं ना क्यों सब तो बखान्यो दोरा सगल द्वार को छाड़ कह गए तुहारो द्वार बाएं गए किला जस गोविंद दास द्वार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएं गए किला जस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा नंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाए सह सिद्धि मनोजियां बधाइया राग तन परिवार प्रिया शब्द गावने आईया शब्द तंगावो हरी केरा मन जनी वसाया

भक्त रहण दयानी माता के उधर में प्रतपाल के सोके मनो सारी है मनो क्यों सारी है वृदाता जी अगर मैं आहार पहुंचावे उसनों के वो न सके इसनों अपनी लिबलावे अपनी लवे अपने लाए गुरु सास मालिक कहे नानक वृदाता सोके मनम सारी है जैसी अगन उधर में तैसी बार माया माया अगन सब एक जयी करते खेर चाया भाणा ता जमया परवार भला पाया लिप छिड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया ए माया जिधर विसरे मोह जे भाव दूजा लाया गए नानक गुर प्रसादी जिन्हा लिव लागी विचे माया पाया हर आप मूर्ख है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे बिटो रहे लोग मिलाए ऐसा सतगुरु जय मिले तिसन सर संपिए विचों आप जाए जिदा जीव तिस मिले हर वसे मन आए हर आप मूलक है भगत ना के नानका जिनर पले पाए हर आस मेरी मनमन जारा हर आस मेरी मनमन जारा सतगुरु तेरा जानी हर नित जपियो जियो ला कटे दिहाड़ीए धन तिना मिलिया जिना रपे भाणा गए नानक हर आस मेरी मनो अमन जारा हे रसना तू अनस राज तेरी प्यास जाए होर किते चर हर रस पले ना पाए हर रस पाए पले पिए हर रस बोल ना तृष्णा लागे आए हे हर रस पर करमी पाई है सतगुरु मिले जिसाए कहे नानक होर आन रस बिसरे जा हर वसे मन आए हे शरीरा मेरिया हर तुमे जोत रखी तद जग में आर आप हर जोत रखी तो वे तद जग में आया हर आपे माता आपे पिता जन जे उपाय जग दिखाया गुर प्रसादी बुझे आद चलत होआ चलत नदरी आया कह नान सचका मूर रचा जोत राखी दा तू जग में आए मर जाओ पे अवराखन सुनाया हर मंगल गाओ श्री ग्रह अंदर बढ़िया हर गाओ मंगल ने सकिए सौदू न व्यापे गुर चढ़ लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनंत बाणी गुर साहब जानिया नाम अरस भोग गए नान प्रभाव मिलिया करण करण जोगो कहे नानक प्रभाव मिलिया कण कण जोगो ए श्री राम मेरे हर तुमे जोत रखी तद जग में आ जोत रखी तद विच ता तू करमे हर जोत रखी तद विच ता तू करमे ए श्री राम मेरे जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्री राम जा तू जग में आ जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नाम साया गुरु प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानके श्री प्रवान होआ जिन सतगुरु सिउ चित लाया हे नेत्रो मेरे ओ हर तुमे जोत तरी हर मन अवरन देखो कोई हर मन अवरन देखो कोई नदरी अल ने आलिया हे विस संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी है गुरु प्रसादी बुझिया जावे कारी कह हर मन अवरन कोई कहे नानके नेत्रां से सतगुर मिली है दिव दृष्ट हो सर्व नु मेरे ओ साचे सुनने नू बटाए साचे सुनने नू बटाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जिस मंत्र हरिया हो आ रसना रस माणी साचे लख वडाणी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नू बटाए हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा बुन मजाया बजाया बाजा पाउन नौ द्वारे परड किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तैन एक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत न जाई पाया कहे नान घर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के बाजा बुन मजाया वो साचा सोला साचे कर गावो गावो ता सोला कर साचे जिते सदा सच ते आवे सचो ते आवे जान तुत भावे गुरमुख जिना बुझावे हे ओ सत सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कहे नान सत सोरा सच्चे घर गावे आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार मन प्रभाया उतरे सलव सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जीओ दर्शन प्यासी दिन सिरात चितवो अनदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सज्जन सच्चा पातशाह सिर शां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सो कहो टल गुर सेवी है एहनस

जन्म मरण दुख जाए, वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवां, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल पयंगम साधे। पंच जना संग ना छुटकियो, अधिक अहम बुद्ध बादे। प्यारे इन विद मिलन न जाए, मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी कह द्वारे, दीजे बुद्ध विवेकाराओ। मोन प्यो कर पाती रहो, नग्न फिरो मन माहे। टट तीर सब धरती भरम्यो, दुबदा छुटकै नाही।

सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलौ विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए बेशुमार अथाह अगणत अतुल

अंत कारण के ते बैल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए। जीवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तेल ना तमाए। केते मंगे जूद अपार केत्या गणत नहीं विचार। केते खब तुटे वेकार केते लैले मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख भूख साध मार। ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए। होर आख न सकै कोय जे को खाए के आखन पाहे। ओ जाने जेत्या मोह खाहे आपे जाने आपे दे आखे से पे कई के। जिसन बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। अमोल गुण अमोल व्यापार मुल व्यापार ये मुल भंडार। मुल आवह मुल ले जाहे अमोल पाए अमुला समाए। अमोल धर्म अमोल दीबान अमोल तुल अमोल परवान। अमोल बगसीस अमोल निशान अमोल कर्म अमोल फरमान। अमुलो अमोल आख्या ना जाए आख आख रहे लेव लाए। आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वख्याण। आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद। आखे ईसर आखे सिद आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव। केते आखे आखण पाहे केते कह कहे उठ उठ जाहे। इते कीते होर करे ता आख न सकह कई के। जीवड पावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए। जे को आखे बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार। सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्ब समाले। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे। केते राग परी सो कही ना केते गावन हारे। गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावे चित गोपत लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले। गावन रतन अपाए तेरे आठ सठ तीर्थ नाले। गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तहारे। सही तुदनो गावे जो तद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पहाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहा पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान के करे बिभूत। खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेत से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाके रिद सिद अवरा साध। संयोग वियोग दुकार चलावे लिखे आवे भाग। आदेत से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तस भावै

देश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेत से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश एक दूजी पहो लख होए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीस एत राहे पत पवड़िया चढ़िए हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपे नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जोगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवे धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पांच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काट घड़िए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते एंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट ते घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुद कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताकि रूप न कथने जाहे ना ओह मरे न ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे केलो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो लो अकार जिव जिव हुकम तिवे तिवकार वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरे सुन यार अहरण मत वेद हथियार पौ खला अगन तप ताओ पांडा पौ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिनको नजर

लावे। इहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया इहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरों लिखे आया। एक फिरे कनेरे करहै गल्लां, गली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी ते आया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सुभाइया, कहन दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुखार हर त्याया, करमी सहज ना उपजे बिन सहज, सहिसा न जाए नह जाए, सहिसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहिसे जियो मलीन है कित संयम।

तिनी जन्म जुए हारे आए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मै नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारे आ जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कुमाणी कूड़ की सोहे पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारी कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाली जे को सिख गुरु सेती सनमुख हुवे हुवे तां सनमुख सिख कोई जियो रह गुर नाली।

जाय। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सारणा जानी, ततै सारणा जानी, गुरु बाजो ततै सारणा जानी। तहि गुणी संसार ब्रह्म सुता, सुत्या रैन विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे।

करतै खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया हे माया जितर विसरे मोह बजे भाओ दूजा लाया।

0: इतनी हाजरी प्रवान करनी पहुंचो दी खिमा। अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु घर के कीर्तनी सत्कारयोग भाई साहब भाई दलवाग सिंह जी और उन्होंने जथे का, जिन्होंने आप जी सजे दीवान के अमृत वे कीर्तन द्वारा निहाल किया। हुण आप जी के सन्मुख सत्कारयोग गुरु पंथ के विद्वान कथावाचक भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप संगतों के नाल गुरमत विचार की सांझ पाउणगे। इस हफ्ते जो इतिहास गुरु पातशाह के इतिहास के इतिहासक दिहाड़ा लंघ के गया है, 22 सितंबर सिख धर्म के बानी पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जिन्होंने 70 साल की उम्र के करतारपुर साहब की पावन पित्र धरती के उत्ते अपना पंच पुत्र श्री त्यागया ज्योति जोत समाए। उस इतिहासक दिहाड़े के प्रथाए आप जी के नाल गुरु पातशाह का पावन इतिहास पावन बाणी की रोशनी आप जी साझा करता जतन करे सत्कारयोग भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी। इस दे नाल ही बेनती करा कि बाहर मेन गेट के खब्बे पासे डॉक्टर साहब पहुँचे हुए हैं, अगर किसी ने कोई चैकअप करवाना हो कोई डॉक्टरी सलाह मशवरा लेना हो 1:30 बजे तक पेशेंट्स लैणगे, उस तो उपरंत उन्होंने नहीं लैने। सो आप संगतों की जानों बेनती है कि अगर किसी ने कोई चैकअप करवाना हो तो उन्होंने नाल संपर्क कर सकता है। आओ हुण भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वालियां पासों गुरमत विचारां गुरु इतिहास सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु साहिब जी बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै। वाहिगुरु जी

परम सम्मान योग दसा ही पातशाहियां दी जोत सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुकद्दस गोद विच हफ्तावारी दीवान दियां हाजरियां भर रही बहुत ही आदरणीय गुरु स्वरूप सात संगत जी बहुत वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तो गुरबाणी दे मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो। गुरु स्वरूप सात संगत जी एक श्लोक जो पहले पातशाह धन गुरु नानक साहिब महाराज जी तो दी पवित्र रसना तो उचारण किया होया वो आप जी नाल दास ने तुच्छ बुद्धि अनुसार सांझा किया है जिसनू मैं अपनिया विचारां दा आधार बना के तुहाडे चरणां च कुछ मिनट बेनतियां करनिया ने। जिस तरह दास तो पहला सन्मानयोग सरदार दविंदर सिंह जी हुणा ने तुहानू दस्या है भी इसे हफ्ते बीती 22 सितंबर नू पहले पातशाह धन गुरु नानक साहिब महाराज दा ज्योति जोत दिवस सी। सो आम तौर ते फिर वो जिहड़े दिहाड़े वर्किंग डे विच आउंदे ने उन्हां दे संबंध विच वीकेंड दे उत्ते जदों संगत इकत्र हुंदी है ते उन्हां दिहाड़ियां दे संदर्भ विच विचार वटांदरे कीते जांदे ने। सो धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत दिवस उन्हां दी पवित्र बाणी चों उन्हां दा संखेप जिहा सलोक जिहदे विच गुरु नानक साहिब की जो फलासफी है उन्हां दे जो सिद्धांत ने वो संखेप रूप विच उन्हां ने निरूपण किए ने वो मैं आप जी तो आग्या लैके तुहाडे चरणां विच रखा। उस तो पहला आओ गुरु मर्यादा अनुसार दस्त बस्ता गुरु फतेह अर्ज कर रहे हैं। आप सारिया ने कृपा करनी एकाग्रता की दात बख्शिश करनी सैलफोन जेड़े करीब करीब साढ़े सारिया को एक एक तो हैगा ही है कई को दो दो भी ने और वो थोड़े समय लई जे बंद कर लै जान जा साइलेंट ते लगा लै जान बड़ी मेहरबानी होगी। और कई बार छोटे बच्चे नादान हुंदे ने बच्चा अचानक रोन लग पैंदा है जां कोई होर आचरण करदा है बच्चियां नूं नहीं पता हुंदा तो वो जिन्हां दे नाल बच्चे होण जे उदों इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो उन्हां नूं लै के थोड़ी जी डिस्टेंस बना लैण ते बाकी माहौल जिहड़ा है वो फिर बिगड़ नहीं पैंदा। उम्मीद है आप जी बेनती प्रवान करोगे आओ गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हजूर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अपनी हयाती दे अंतले 18 साल आप जी ने रावी दरिया के किनारे जो नगर

करवा दिती। गुरु स्वरूप साध संगत जदों ये गुरियाई मर्यादा पूरी होई ते बाबा बलवंडा जी ते सत्ता जी ने अपनी वार च लिखिया है, कह लगे हो रो गंग वहाइए दुनियावी आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उच हदी वैण विरक्यों। जदों गुरु नानक ने अपने सेवक नू मत्था टेकिया ते लोग कह लगे जेड़ी उल्टी गंगा वहाण दी कहावत सी असी बड़ी बार सुनी सी, पर अज सानू पता लगा है भी उल्टी गंगा वहाण तो मुराद की है चेले नू गुरु ने तखत ते बिठा के उहदे चरणां विच मत्था टेक दिता। ਇਹ ਤੇ ਵੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ, ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਭੱਠੀ ਮੇ ਪਾ ਕਰ ਜਬ ਕੁੰਦਨ ਕੀਆ ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਔਰ ਅੰਗਦ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਦੀਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਚੁਲਹਿ ਸੁਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਟੀ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੇਬਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਸੋਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਸੋਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਢਾਂਡਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜੂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜੂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਛੜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤਿਆਗੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਝ ਸੋ ਮਿਲਨ ਕੀ ਜੇ ਚਾਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੁਝ ਸੋ ਮਿਲਨ ਕੀ ਜੇ ਚਾਹੀ, ਸਦਾ ਵਿਛੜਨੋ ਭਾਵੈ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਨਰ ਕਰੈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੇ,
सुनन मनन निद प्रत निद्यासे। फिर दुरा दिया मुझसो मिलन की जे चाही, तुहाडे विचों जेड़ा जेड़ा ये चाहुंदा है भी असी गुरु नानक नालों कदी ना विछड़िए ते गुरु नानक साडे नालों कदी ना विछड़े। सदा विछरनो भावे नाही, असी गुरु नानक नालों कदी भी ना विछड़िए, मिले ही रहिए। ते ओ की करो, ते नर करहे शब्द अभ्यासे। तुसी की करना, तुसी शब्द दा अभ्यास करना। ते फिर एक्सप्लेन कीता किवें करना है, सुनन मनन निद प्रत निद्यासे। सुनना है, सुन के शब्द नू मनना है, ते जदों सुन के मनोगे ते निद प्रत निद्यासे वाली तुहाडी अवस्था बनेगी। चार पौड़ियां सुनिया दियां, चार पौड़ियां मनें दियां, ते अठ पौड़ियां उचारण करके फिर निद प्रत निद्यासे नू एक्सप्लेन करन लग पे भी पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। ए है सुनन मनन निद प्रत निद्यासे। ए हजूर दा पांच भूतक शरीर अलोप करन तो पहला अपनी कम्यूनिटी नू शुभ उपदेश सी भी तुसी मेरे नाल मिले रहना चाहते हो। ते शब्द अच्छा दसवीं जोत विच फेरे बचन कीता जदों महाराज ने कहा भी देहधारी गुरु प्रथा अज तो खत्म। ए बोल जेडे बाद विच रतन सिंह पंगू ने, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने, सेनापति ने, इन्हां विद्वाना ने, कविया ने लिखे, उदों गुरु नानक साहब दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बोल सन भी आ गया भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। अच्छा नादेड़ दी धरती ते बिल्कुल सेम सिखां दा सवाल सी, महाराज जे असी तुहाडे मिलना होवे फेर। महाराज कहन लगे तीन रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहूं तोहे समझाए। एक रूप गुण ते परे नेत नेत निगम जे उचरै, कट कट व्यापक अंतर जामी, पुर पुर रच्यो जो जल कट स्वामी, दूसर रूप सिख है मोर। फिर कहन लगे तीसर रूप ग्रंथ जी जानो, उथे कहिंदे ते नर करै शब्द अभ्यासे। उथे कहिंदे सन तीसर रूप ग्रंथ जी जानो, या मैं भेद ना रंच पछानो, जो मम सात चाहे कर बातां, ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथा। जदों सिद्ध पुछदे ने कौन गुरु किसका तू चेला, ते हजूर कहिंदे ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मुझसो मिलन की जे चाही, सदा बिछरनो पावे नाही, ते नर करें शब्द अभ्यासे। 22 सितंबर ईस्वी सन 1539 श्री करतारपुर साहब की पवित्र धरती ते हजूर गुरु नानक साहब ज्योति जोत समा गए और अपने सिंघासन ते तखत ते परख करन तो बाद भाई लहणा जी नू अंगद बना के गुरु बना के तखत दे उत्ते टका दिता। उदू पहला प्रीख्या हुई सी क्योंकि गुरु घर का सिद्धांत है तखत राजा सो बह जो तख्त है लायक होए। ये परख कीती गई, प्रीख्या लई गई और ओ जां सो दोस्तां लैणा टिक्यो। तो ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे श्री करतारपुर साहब ज्योति जोत समाण दा संखेप जिहा इतिहास है। जदों भी किसी महापुरश का असी दिहाड़ा मनाने ना साध संगत, तो उहदे च सब तो जरूरी हुंदा है कि उस दे साडे तो उस दियां उम्मीदां की ने। जे गुरु नानक साहब दे फलसफे नू संखेप विच कहना होवे ते जेड़ा सलोक मैं तुहाडे नाल सांझा कीता है ओ सलोक सी, क्योंकि लोग पुछदे सन बई महाराज धर्म ते पहला ही बहुत ने। महाराज कहने लगे धर्म जदों शुरू हुंदे ने माड़े नहीं हुंदे, पर इन्हां तिन्हां धर्मां दे मुख आगू तिन्ने ही ए गुमराह हो गए ने। महाराज केड़े केड़े? कहन लगे ब्राह्मण काजी ते जोगी। महाराज ओह किवें? कहन लगे ब्राह्मण नू मुखातब होके कहन लगे ज्ञान भी होना गावे गीत, गीत बड़े गाउंदा पर ज्ञान कोई नहीं गा। रही गल मुल्ला दी ते भुखे मुल्ला करे मसीह, थोड़े जे मिंटां दी गल दे बस एकाग्रता बख्श दिओ। एक बार सारे प्यार नाल गज के आखो सतनाम श्री। भुखे मुल्ला करे मसीह,
मखटू होए कै कान पड़ाए जोगी, फकर करे फकीर हो गया, होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए। गुरु भी सदांदा है, पीर भी अखवांदा है, ते मंग के भी खांदा है। हजूर ने ऐलानिया किया भी जेड़ा मंग के खांदा है ता कै मूल ना लगी है पाए, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामन नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध। हजूर कह लगे तीने उजाड़े का बंद, इसलिए मैनू बुनियाद निर्मल पंथ दी रखनी पई, भी मनुखता वास्ते ये मजहब ये संप्रदावा ये धर्म मुकम्मल कारगर नहीं। महाराज ये ठीक है भी ज्ञान भी होना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, ये भी ठीक है भी मखटू होए कै कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए ता कै मूल ना लगी है पाए। तुसी की कहिंदे हो, तुहाडा उपदेश की है? ता हजूर कहन लगे मेरा उपदेश है काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे। इहदे विच तीन बचन महाराज कर गए, काल खाए धर्म दी किरत करे, किछ हथों दे वंड के छके, नानक राह पछाणे से ओ फिर उस राह तुरदा है, ओ फिर नाम जपदा है। तो पहली गल काल खाए, दूजी गल किछ हथों दे, तीजी गल राह पछाणे से। मैं तुहाडे तो आग्या लैके ना तिन्ना नू थोड़ा थोड़ा खोल दिया। वो धर्म दी किरत किन्ना जोर देंदे ने, जदों हजूर अहमदाबाद गए ने ते वह बड़ी प्रसिद्ध घटना है। उथों का एक हाकम है जालिम खान, उहदा नाम सी जालिम खान। जालिम खान का एक अहलकार सी मलक पागो, यह बड़ा वड्डा रिश्वतखोर सी, पराया हक मारदा सी, रिश्वत लैंदा सी, सारा साल अहमदाबादियां नू सतांदा सी, मानसिक तौर ते टॉर्चर करदा सी, काम लमकांदा सी करन लई ना, बई काम नू लमकांगा ते परत परत के मेरे कोल। तुसीं कहिंदे भी डिले ब्रीड्स करप्शन, जिहड़े करप्शन करदे ने ना साडे उत्थे भी, वह मूंह पाड़ के नहीं कहिंदे भी इन्ने रुपये दिओ ते काम करांगे, नहीं उहनां दा तरीका हुंदा है भी खराब करना है, फेरे मरवाने ने, लेट करना है, इहनू कहिंदे डिले ब्रीड्स करप्शन, किसे काम नू डिले करना। वाहिगुरू वाहिगुरू, एक करप्शन दे बीज हुंदे ने। एक वारी सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री। डिले ब्रीड्स करप्शन, सारा साल जुल्म करदा सी, रिश्वत लैंदा सी, साल च एक दिन सारे नगर नू कट्ठा करके ते उहनां नू भोजन छका दिंदा सी। लोकी बड़ी वाह वाह करदे सन, दैव ने तो उन्नी दिनी हजूर उत्थे चले गए, इन्हें सारे नगर नू वरजिया ते पुछया अपने निकटवर्तियां नू भी कोई रह ते नहीं गया। तुसी बड़ी बड़ी कथा सुनी है, उहदे विच भी जिहड़ा बरीक जिहा मैसेज है मैं तुहानू दसना है। आखन लगे महाराज साहब आ गए ने, भाई लालो दा एक मेहमान है वह नहीं आया। उहनां दा इशारा गुरु नानक साहब वल सी, सुनेहा भेजिया हजूर नहीं आए, फिर सुनेहा भेजिया फिर नहीं आए, ओड़क सख्ती नाल सद्या ते हजूर आए। ये वड्डे हारे तखत दे उत्ते कुर्सी डाह के बैठा है, खुशामदी इहदे आले दुआले खड़े ने, खुशामद कर रहे ने, महाराज तुहाडे वर्गा कोई दानी नहीं, तुहाडे वर्गा कोई धर्मी नहीं, तुसी बड़े चंगे हो, ये तैयार। ते गुरु नानक अडोल अगे जाके बाहां लमका के खड़े हो गए, उन्होंने इशारा किया भी यही गुरु नानक ने। आखन लगा नानक जी तीन चार स्नेहे भेजे ने, प्रशादा छकन क्यों नहीं आए? हजूर कह लगे भी नहीं, मैनू जरूरत नहीं सी इस करके नहीं आया। नहीं, गल जरूरत दी नहीं है, मेरा यह नहीं है, मैं भी इस दिहाड़े मैं सारे नगर विच भावे कोई बाहरों आया भावे इतों का, मैं उन्हूं शकाना ही शकाना हूं। छको, बड़े पदार्थ बने ने, खीर बनी है, माल पूड़े बने ने, कई प्रकार दिया 36 प्रकार के भोजन ने, छको। हजूर कह लगे भी नहीं, मैं नहीं छकना। नहीं, ये तुहाडी मर्जी की गल नहीं है, ये मेरा नगर है, मैं हाकम हाँ, मेरा हुक्म है, छको। महाराज कह लगे भी नहीं, इदा का हुक्म मैं नहीं मानता हूं। फिर कह लगा नानक जी तुसी छकते क्यों नहीं, वजह होगी? महाराज कह लगे वजह है ना। कह लगे जां ते प्रशादा छको जां फिर वजह दसो भी तुसी क्यों नहीं छकते।
महाराज कह लगे मैं वजह तेनू दसनी नहीं सा चाहता क्योंकि सारा समाज कट्ठा होया है और तेनू अपना अनादर महसूस होगा। आखन लगे नहीं कोई गल नहीं तुसी दसो। हुण उत्थे जिहड़े बचन गुरु नानक साहब ने कहे ना वह संखेप जै बचन ने महाराज आखन लगे भी जिहड़ा तेरा भोजन है ना इहदे विचों गरीबां दीआं चीखां दी आवाज आउंदी है, मीनज तू गरीबां दा हक मारिया होया और तू वार वार कहिंदा भी लालो दे घर क्यों खांदे हो, ते मैं तेनू दसना चाहना भी लालो की किरत सुची है, भावें उहदा भोजन रुखा है भावें उहदा भोजन सधारण जिहा है पर लालो दे भोजन विच अमृत है, तेरे भोजन विच पराई किरत रूपी जहर है, तपियन तप छीजै ए खाए ध्यानी ध्यान ना लगै लगाए। मैं ता नहीं खांदा भी तेरी जिहड़ी ये पाप की कमाई है इहदे विचों कोई भोजन छक लै ते उहदा पहला कीता होया तप नेस तो नाबूत हो जांदा है, अगे तो बंदा जपजी विच बवे ध्यान विच बवे उहदा ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि उहने बेईमानी का भोजन छकिया होया है, वह चित उहदा एकाग्र नहीं हो सकेगा। इसलिए गुरु नानक साहब का पहला उपदेश काल खाए दसा नौआं की किरत करे धर्म की किरत करे परपंच ना करे, बहु परपंच कर पर तन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै मन मेरे भूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। फिर दूजी गल इहनू वंड के छके जदों सिद्धां ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नू आख्या ना भी बाबा जी सानू संखेप विच दसो तुहाडी विचारधारा की है, तो महाराज ने यह तीन सूत्री धर्मदेश ही दस्या धर्म की किरत करो वंड छको नाम जपो। आखन लगे महाराज धर्म की किरत भी हो सकती है, नाम ही जपया जा सकता है, हर हाल ते वंड के नहीं छकया जा सकता, जिन्हें शरीर बैठे हो ध्यान दिया जे महाराज धर्म की किरत हो सकती है, नाम भी जपया जा सकता है, वंड के भी छकया जा सकता है, पर हर सिचुएशन विच नहीं। महाराज कह लगे नहीं हर हाल वंडिया जा सकता है। सात संगत इन्होंने शरारत की, एक तिलां का दाना लिया के गुरु नानक दे अगे रख दिता, यह नहीं आख्या भी इहनू वंड के विखा, रख दिता भी तुसी समझदे हो, उन्हां दा संकेत सी भी आ तिलां का दाना वंड के विखाओ। तो हजूर ने भाई साहब नू इशारा किया, भाई साहब भाई मरदाना जी कुंडा डंडा कह लो दौरी डंडा कह लो वह लै आए, उन्हां तिलां दा दाणा विच रख के उत्तों पानी पाया उहदे नाल घोट के हजूर कहन लगे लियाओ अपने अपने बर्तन, मैं तुहानूं दसना जे नीयत वंडण दी होवे ते एक तिलां दा दाणा भी वंड के छकिया जा सकदा है, जे नीयत ना होवे ते कई कई मील लंबे गोदामां विच अनाज सड़ जांदा है पर उह गरीबां दे मूंह तक नहीं पहुंचदा। हजूर ने एक तिलां दा दाणा इन्हों गुरु सरूप साध संगत जी वंड के विखा दिता से। ए दूसरा सिद्धांत बख्शिश किया, वंड के छकन दियां बड़ियां बरकतां ने जो गुरु नानक साहब ने सानू बख्शिश कीतियां। बाबा साहिब सिंह बेदी जदों उन्होंने उत्थे हकूमत के खिलाफ अंदोलन किया आजादी की लड़ाई में शामिल होए तो हकूमत ने उन्हां दी गिरफ्तारी के वरंट जारी कर दिते। बड़ी दिलचस्प घटना है, थोड़ी जी गल है एकाग्रता बख्श दियो मेरी बेनती है। सो बीबाई मैं तुहानूं बेनती कर रहा नहीं पर इत्थे करके आके तो आप ही समझना चाहिए, एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री। अच्छा ये ना तुसी दे वारस बैठे हो पंथ दे, ये अक्सर दिक्कत आउंदी है, ये जरूर बेनती प्रवान करिया करो, ये जिहड़ा कथा दा विशा है ना ये मेरे आने वाले वीर का थोड़ा काम सहला हो जाए। ये बिल्कुल इस तरह होंगे जिवें टिकी हुई झील है तो तुसी उहदे च एक कंकर सुट दिओ ना वह सारी लहर बना के सारी झील डिस्टर्ब हो जाएगी। इत्थे तीन चार जने साज नहीं बज रहे, टीम वर्क नहीं हो रहा, एक कली जिंद इत्थे बैठी बोल रही है, इत्थे कला तो तुसी कई बार दो तीन जनियां लग पैंदियां ने, फर्क सिर्फ इन्ना भी मेरे को साउंड हुंदा तुहाडे कोल साउंड नहीं, आवाज तुहाडी फिर भी मेरे नाल ज्यादा हुंदी, उह सारी संगत का ध्यान तितर बितर। इस वास्ते बेनती प्रवान करो, एक बारी सारे बेनती प्रवान करो ते

हे मेरे मन नानक, वो विगस्ता है बेपरवाह है क्योंकि उसने सारा इंतजाम करके रखा है, सारा विधान सारा सिस्टम।

जे गावे दा अर्थ निरा गायन करना होए तो गावे को तान होवे किसे तान। एक ही गल बनी, जोर ला के गाओ जिन्ना जोर होए, होवे किसे तान, जिन्ना किसे च जोर है उन्ना जोर ला दे। एक नहीं गुरु साहब कह रहे, जे गावे दा अर्थ यही हुंदा ते इसे पदे विच पौड़ी च पातशाह सानू गावे को विद्या, विद्या नू गाईदा किवें, विद्या नू एकेडमिक एजुकेशन नू स्टडी करना हुंदा, गावे को विद्या, विद्या नू समझना, अध्ययन करना। लिखिया गावे तो गावे दा भाव समझना, अध्ययन करना, जानना, बुझना भी है। हुण आने गावे को तान, जिन्नी तू जिन्ना तू गहरा सोच सकता है, जिन्ना गहरा तू जा सकता है, जिन्ना होवे किसे तान, उन्ना तेनो इहदे चो हीरे जवाहरात उन्ने रतन कट्ठे कर सकता। गावे को तान, जिन्ना तू गहरा सोच सकता है, गहरा जा सकता है, गावे को तान होवे किसे तान। गावे को दात जाने निशान, कोई उसकी दात नु ही उसकी निशानी समझते ने। लिखिया गावे है बात समझण दी है, गावे को विद्या, विखम विचार ओखे ओखे विचारां नु तू हल कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। किवें गावे, पंजाबी वाला हिंदी वाला गावे नहीं, गुरबाणी वाला गावे।

समझना है। गावे कोई समझदा है कि रब कितने दूर है, समझदा है। गावे को जापे दिसे दूर, पर कोई तो समझदा कि मेरे हाजिर नाजिर है सच्चे पाशाह। मैं तेनू तेनू मैं मानदा जानदा, तेनू मैं जफिया पाना। एक भोरी ना बेछोड़ जे तू मित्र साढ़ा। गावे को वेख है हाजरा है दूर, कोई समझदा है कि नेड़े है हाजिर है, कोई समझदा है कि दूर।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक कलईं ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुए सहाय। हरजन हर गोबिंद नूं सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उनदया वे ताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां की कमाई का ध्यान तरके। बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए सिखी सिदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू चेता वे चेता वनका सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरू हे अकाल पुरख वाहिगुरू अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दे माण सतगुरु नताणियां दे तान न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अरदास बेनती है आप जी दियां महान बख्शिशां रंतां दा सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां होईयां बाणी पढ़द्यां विचारद्यां अनेकां भुल्लां हो गईयां होणगीयां पग जान के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शना अमृतमई बाणी दा पहाओ दर आईयां संगतां दे हिरदयां च विसावना सरबत दियां तिल फुल पीटावां दर प्रवान करनियां दरों करों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत दी कारज रास करने शुभ मनोकामना संपूर्ण करनियां पावन दरबार की हाजरी भरदियां गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां ने दर करदे सेवक अभिताज सिंह की तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते परिवार वल्लों अरदास बेनती है सतगुरु जी रहमत करनी शीश ते रहमतां प्रयात रखणा दे अरोगता की दात बख्शिश करनी लखदीप सिंह ते कोमलप्रीत वल्लों अपने बेटे जोहन की तंदुरुस्ती चढ़दी कला ते उच्च

चार देखो पत पाई अर सतगुरु पहन आवे सतगुरु प्रतक होंडे बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केशव गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुरु पावे पिंड पत्र किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुरु शब्द सच निशान जियो सतगुरु पुरख जय बोलिया गुरु सिक्का मन लई रजाए जियो मोरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याय। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनाउन दया बेताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरक। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवानां जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरक। बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े तन आरियां नाल चरवाए सिखी सदक किसां श्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरक। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरक। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वे चेतावन का सदका सर्व सुख हो वै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रियाय देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाख दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरू अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी मान सतगुरु नताणियां दी तान नेउटियां दी ओट नेआसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। अरदास बेनती है आप जी दे अटल हुक्मां दी तावील करदिआं दर करदे सरदार मोहन सिंह जी जिहा चिरी लिखिआ तिहा हुकम पमाए कले आवे नानका सदे उठी जाए दे मां वाकां अनुसार सेवकां नूं आप जी ने जितनी आरजा बख्शिश कीती सी संसारक यात्रा संपूर्ण करदिआं होइआं परलोक प्याना कर गए सन उन्हां दी रूह दी शांति लई समूह परिवार वालों आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लैके सहज पाठ आरंभ होए सन। आप दीआं मेहरां सदका संपूर्णतावां होईआं उपरंत दीवान सजे अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन होए बाणी पढ़दिआं होईआं फुल्लां दी खिमा बख्शणी अगों वास्ते समत बख्शणा अमृतमई बाणी दा भाव विछड़ी आत्मा नूं परलोक विच सहाय करना सदीवी काल वास्ते अपने चरणा कमलां च निवास बख्शना वागुण दे गेड़ तों रहत करना पिछे सरबत परिवार साख संबंधियां बच्चों के सिर ते रहमतां भरिया हथ रखना भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना परिवारां विच सुख शांतियां प्रदान करनियां दर आईआं संगतां दीआं हाजरियां दर प्रवान करनियां दरों करो नाम दान सिखी सदक भरोसे दी दात बख्श के कृतार्थ करना बख्शे हुए खजानिआं विचों कड़ा प्रसादी देग दर ते हाजर है प्रवान होए प्रवान होया प्रसाद सरबत साध संगत च वरताउण दी आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श के सेवकां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे नानक राम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਬਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਦਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖ

सारे बोल के सुनो फिर विचार रुकने साडे, नहीं तो सोचा चली जानी है अंदर, मन ने जुड़ना नहीं वाहगुरु नाल, बोल के सुनो।

सारे बोलो, बोल के सुनो, सुख मिलेगा। सुखी नाम दे विच सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन करो।